0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहां के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।
1: नफरत कर

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: तुम्हें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना, मैं हूँ श्रेया।

0: माइट जस्ट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट मुझे डेजा वो वाली फीलिंग बहुत पसंद है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और जिंदगी में आपको भी ये वाली फीलिंग तो हुई होगी। अरे मान लो आप किसी सिचुएशन में हो और आपको एकदम से लगता है कि अरे ये तो पहले भी हुआ है, एग्जैक्टली इसी तरीके से हुआ है। इनफैक्ट आप ना उस ऑरा को, उस एनवायरमेंट को भी महसूस कर पाते हैं एंड दैट इज डेजा वो। और ये वाली फीलिंग लाइफ में इन जनरल तो मिलती ही रहती है हमें, बट बॉलीवुड की तरफ से भी मिलती है यार, थ्रू सर्टन फिल्म्स एंड डेफिनेटली थ्रू सर्टन सॉन्ग्स। और रिसेंटली एक गाना काफी पसंद आ रहा है मुझे, विच इज चांद मेरा दिल का टाइटल ट्रैक। हाँ जी, ये अपकमिंग फिल्म है जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इट इज गोना रिलीज ऑन द 22nd ऑफ मे, लेकिन इसका जो टाइटल ट्रैक है फहीम अब्दुल्ला की आवाज में, सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स, दैट गोज समथिंग लाइक दिस।

सिमिलैरिटी महसूस हुई आपको इन दोनों गानों में? बस यही तो फील कराना था। वैसे ऐसे अगर डेजा वो वाले गाने आपके दिमाग में भी हैं, देन डू डिस्कस दैट विद मी, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi. It's hot.

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

शूट पे पहुंचे शार्क्स। नहीं यार बाबू मोशाय, शार्क टैंक वाले शार्क्स नहीं, बट लिटरली शार्क्स पहुंच गए थे इस फिल्म के शूट के दौरान। आज बात कर रही हूँ फिल्म ब्लू के बारे में, जो साल 2009 में आई थी, डायरेक्टेड बाय एंथनी डिसूजा। वेल, इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, राहुल देव, लारा दत्ता, कटरीना कैफ, जायद खान, कबीर बेदी जैसे एक्टर्स थे। एंड इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स सीन है आपको याद होगा, अंडर वाटर वाला है। तो इसकी शूटिंग जब एक रैकेट शिप में हो रही थी ना, उस दौरान अक्षय कुमार को उनके फोरहेड पे चोट लग गई जिसमें से खून भी निकला। एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर स्पॉट पे शार्क्स पहुंच गई, जिसके बाद स्टंट एक्टर्स ने अक्षय कुमार को रेस्क्यू भी किया। बट अक्षय कुमार बीइंग द खिलाड़ी वाज रेडी टू गो बैक इनसाइड द वाटर फॉर सेकंड टेक, लेकिन डायरेक्टर साहब ने बोला कि भैया देखो हम खुश हैं, जो ले लिया वो काफी है, अब जान माल का नुकसान नहीं झेल सकते हम। खैर, ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो एक फिल्म बनाने में बनती है, बस वही कहानियां मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो एक काम करो, आप अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे बताओ एंड आई विल गेट सम अमेजिंग इन्फो अबाउट दैट इज वेल। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से आप मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: doctors.
1: New York में लंबी लंबी buildings होती है ना? प्लेन से देखा था.
2: शशि वो मैनहट्टन है.
1: मैनहट्टन.
3: मैन एज मी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप.